0: कथा टॉप स्टोरी
1: मूल्य वंचावन सिदुकले पेरसा कत्तडंगुवट वीसा कोंदेसी उल्लंघने करमिन मेरट रेंदी सिट मूल्य वंचावन सिदुकले विदेश जातिक सककरुन्हा सककारन पेरसाक पोलिसी विसिन नत्तडंगुवट गेनतिबेनवा एको